डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ तन सो वेला जित दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे।

से हुए सहाय अर्जुन हर को बिन्नु श्रेय श्री हर राय श्रेय कृष्ण ध्याय जिस तिथे सब दुख जाए तेग पाते समय कना ले आए ताय सब थाए हो सहाय तस पाशय जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाद तांके के बोलो जी पंज प्यारे जो सतारे चार मुक्ति हटिया जपिया तपिया जे नाम जपे देख चलाए देख वाय देख कंडित किता तीन स्वाद तांग करके बोलो जी जिना सिंह सिंह ज्ञान धर्म हित सी स्थिति बन बन खटाए कृपया हारे अचिकेत चिले आर्य नायके के द्वाद से के पानी कितिया धर्म निहारे सिखी के सस्वास नाली दबाए जिंदगी माए तो तांग करके बोलो जी पंजे थकते से बात को जाते तांग करके बोलो जी प्रथम सपत खालस जी के दास है जी सपत खालस जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित्ते आवे चित्ता उनका सब खोए चार चार अच्छा रात तांता लिखे रात देख देख फते बृत की बाज पंत की जीत सी साहब जी सहाय खालस जी के बोल बोले बोलो जी सिखन सिखी दान केस दान रा दान विवेक दान वसा दान प्रसा दान दाना से दान नान दान सिंह से साजे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंडे जुग जुग टल तुम का जयकार बोलो जी जिना निमाने निमाने तानिया दे तानी होटे हरी अच्छी तिपत वाहेगुरु आप जी का जोर तीजे कैंप तीजे दिन की शुरुआत हुई है अपना सिर आप जी का शुक्र है अखर वादा काटा पुल चुक माफ करनी सरबत कार्य राज करनी सही पैरे मेल जिन्हें मिले जिन्हें नाम चित्यावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पैने सरबत भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह

मेरी भी चोली पर असत संगियो जंग मग्याणी दी गल है पक्षतान दी ए साखी सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी विसरिया दा तारा जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है समां बीतदा गया पुत्र वड्डा हो

एक दिन अपने बाप नू धक्के मार के बाहर कढ़ दिता, तू मेरा प्यो नहीं तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है, एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए, बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है, समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है, जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलदे ने ते मेरे तो सुनिया नहीं जांदा। केड़ा गुनाह कीता है, केड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे ओए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया, शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगी। तू गुरु नानक नू भुला दिता, बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया, बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे बच्चिओ मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने, जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे।

नहीं बाप दी सेवा करया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकता है। आ सत्संगियो परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तो पहला तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तो छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा वो प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने जदों सचमुच ही

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनते। ओए गुरसिखा, खुशियां ते तेरे मग

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। एवें उपरों उपरों आखी जांदा है भी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बई दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

अनेक तेरे अनेक पड़े हैं बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मैडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहा। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सम होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख्या है जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकजो मोह पग नहीं चल, हम देखा तह लूबियले, मान एक न चित समूढ़ मना, हर

अखल पवन के सृजनहारे, दास जान मोहे लेहु उबारे। कवियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो। आप हाथ दय मोहि बचाव, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए। सबै रण कवाद सिंगरिए, पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिय और अच्छा। राख ले हम मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजु अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा दुथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन पजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा दिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपा हनि अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। मूर्ख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तय है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सकै न कोई। एक बार दिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा।

उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावै जे को पुंछै तिसका होए उदारो एह वस्तु तजी नह जाई नित नित राखे उर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसा।

शरीर तुम मात पिता हमारे, कोई न जाने ऊंचे थे सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हां दे साहो जिस पास

गए मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मागे मुको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा।

श्री गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत ना सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरियड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरह ना मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो, हर पैड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन त प्रेम लगा हर पान जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हो नाम टो कुरबान जियो, हो हर हर छजन हर मीत दसाई जियो, हर दसे संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगो टूटा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रभ हर बिरहों लगाई जियो, गुर शरदा पूरे अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो,

बेसुरत है सुरता जिस प्रसाद नवे निद पाई सो प्रभ मनते बिशरत नाही जिन दयाल सावे को थान जिन दयाल माणे को मान जिन की नी सा पूर्ण आसा सिमरो दिन रैन सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बेख काटी को नानक इसते कुछ नाही राखन हार को सलाही गौड़ी।

तै तै हद्रथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान।

0: लिखे नम संग लिखे
1: नम संग काय नम संग जय
0: नम संग गंजे नम संग पंजे
2: नम संग नामे नम संग ठामे
0: नम संग कर्म नम संग धर्म
1: नम संग

0: अंत प्रसाद करते किया छिज देसे किया पिज पेसे
1: किया
0: पिज लोके के आदित सोके
1: भूत बनने के विभूत करने के
0: राजन प्रभा है के धर्मन तुजा है
1: अशोक बनने के सर्वा बनने
0: के जत्रंग कृति है के छत्रंग छत्री है
1: ब्राह्मण स्वरूप के अनपो रूपे
0: आदा देव है के आप अपेव है
1: जित्रंग महीने के

0: मालिक रहीम है के कर्म करीम है,
1: ये सर्वन कली है के सर्वन दली है,
0: ये सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है,
1: ये सर्वत्र कौन है के सर्वत्र कौन है,
0: ये सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है,
1: ये सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज है,
0: ये सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है,
1: ये सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ,
0: ये सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है,
1: ये सर्वत्र काले के सर्वत्र कमाले,
0: ये सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता,
1: ये सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी,
0: ये सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे,
1: ये सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे,
0: ये सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे,
1: ये सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे,
0: ये सर्वत्र मानिए सदैव प्रधानिए,
1: ये सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे,
0: ये सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने,
1: ये सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र,
0: ये सर्वं कली में के भर्म पहिमे,
1: आकल अलामे के साहिब कला में,
0: ये हुसनल वजू है तमाम अल रजू है,
1: हमेशुल सलामे सलीखत मुदामे,
0: गनी मुर्शिकते गरीबुल प्रस्ते,
1: लंदल मकाने जमीनुल जमाने,
0: तमीजुल तमामे रजू वल निदाने,
1: हरीफुल अजीम है रजाए के कीने,
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है,
1: अजीजुल निवास है गनीमुल किराने,
0: नरुक्त स्वरूप है तर्मुक्त प्रभूत

0: दादे
1: वत्सर पागे सुसर बानुरागे
0: प्रभुत स्वरूप है चिज है छूत है
1: लड़कन प्रणास है पृथ्वी अल प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा है सदैव प्रभा है नरुक्त सदा है प्रभुत स्वरूप है
1: अनुकत स्वरूप

0: सर्वांतर
1: सर्वंकर है,
0: सर्वं सर्वच है, सर्वनाच है,
1: करुणा कर है, विशंबर है,
0: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
1: ब्रह्मंडस है, कलखंडस है,
0: परते पर है, तृणा कर है,
1: जपा जप है, थपा थप है,
0: अक्ता कीर्ता अमृता अमृत
1: अमृता अमृत है, करुणा कृत है,
0: अक्ता कीर्ता तरनीत्र
1: अमृतेश्वर है, परमेश्वर है,
0: अक्ता कीर्ता अमृता अमृत
1: अजबा कृत है, अमृता अमृत
0: नायक है, कलकायक है,
1: विशंबर है, करुणालय
0: निपनायक है, सर्पायक है,
1: अपंजन है, अर्गंजन है,
0: विज्ञापन है, जपजापन है,
1: अकलन कृत है, सर्वाकृत है,
0: हरता हरता हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है,
0: आत्म बास है, जस के जस है,
1: जंग पर्यात चंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्र,
0: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्र,
1: नमो अंधकारे, नमो तेज तेज,
0: नमो बिंद्र बिंद्र, नमो बीज बीज,
1: नमो राजन ताम सन सात रूपे,
0: नमो परम तंत्र तंत्र स्वरूपे।

0: सतगुरु प्रत्येकों का आशीर्वाद कृ जी की फतेह पा वाहकृतो प्रसाद प्रसाद सवै है श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के सारी ही देश को देख रहे हो मत कहो न देखे प्राण पति के
1: भगवान की पाए कृपाते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे पारी भजान के पूपली बिदनियावत शीस न जात बिचारे जीत फिरा सब देश दिसान को बाजत टोल मृदंग नगारे पूत पविक पवान के पूपत कौन गना नहीं जात बिचारे अंत को अंत के तीर्थ नान दे आदम दान सुसंजम नेम अनेक बिसेख है कौन हार जती जत तार सब सब चार हजार के देख है शुद्ध सपहा दुरंत दुबाहा सुसाज सुना तुर चांद तलाएंगे तोर रीन मरोर मरवासन माते मतंगन मान मलाएंगे
1: भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान करेंगे
0: वीर पार बड़े बरे यार अब चार है सार की तार बचैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया दान विदेफ निंद निसाचर पूत पवेक पवान जपाएंगे
1: पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: पुन प्रताप न बाढ़ जात तुन पाप न के बहु पुंज कपाएंगे
1: प्रसन्न फिरे जग सत्र सबे अब लोग चपाएंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र निराद निराद पचौन त्रिलोक को राज कराएंगे
1: स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयंवर साज करेंगे
0: ब्रह्म है सर्व सिन सचीपत अंत फसे जम फास पर आएंगे।

0: ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो।
1: साथ कहो सुन लियो सबै दिन प्रेम कियो।
0: काहुले पाहन पूछ तरयो सिर काहुले लिंग करे लटकायो।
1: काहुले

तोहे दे दी किहे बिन सजा एका रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही पूपा कहू फूल राजा हवे बैठा कहू समठ प्यो शंकर कैठा अभिरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संकरो जे अस्तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न आए है

0: प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संत बार गनी मन गारे
1: राज पशु नाग नाग निरातल सर्व समय सब को प्रतपारे
0: खत है जल में थल में पल के पल में कल के नहीं करम विचारे
1: दीन दयाल दया निद दुख न देखत है पर देख नहारे
0: राहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड प्रचंड प्रहान पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: मान पाए सके पद्मा पद भेद कते अभेद उचारे
1: रोजी राज लोक राज लोक दान की रोजी ना तारे
0: कीट पतंग कुरंग पुचंगम भूत पविक पवान बनाए
1: देव देव कपे अम्बे ना भेव लख्यो कम से परमाए
0: वेद पुराण कतेब कुरान हसे थके कर हाथ न आए
1: पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पासो किंसरी पद्मा पताए
0: गाद अनंत गाद द्वैक सुपूत पविक पवान अभय है
1: अंत विहीन अनाथ मा बोधाय दोग शिश्रे
0: लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभु है
1: दीन दयाल दया कर शिशु सुंदर श्री पद्मापते हैं
0: नाम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न पोग

0: पाए सके नहीं पार प्रभाव को नेति नित भेद बतावे नारद से चतुरानंद से रमिनारक से सब हो मिल गायो
1: ना भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ ना आयो
0: पाए सके नहीं पार उमा